0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ। गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: गुड न्यूज एफएम 105.1।
2: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
3: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।

0: गुड न्यूज एफएम 105.1।
1: अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम सफल यात्रा प्रस्तुत तेज रोकाको साथमा।

कार्यक्रम जीवन र स्वास्थ्य मानव शरीरको रहस्य प्रत्येक आइतबार बिहान 7:30 देखि 8 बजीसम्म सुन्न नभुल्नुहोला। प्रस्तोता साइकोलोजिस्ट महेन्द्र खड्काको साथमा।

गुड न्यूज एफएम 105.1 MHz। कार्यक्रम अनुरोध संगीत प्रत्येक बिहीबार 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म प्रस्तोता कुमारको साथमा।

0: 追ますよ。
1: नमिबी छिमसा नकटिने हे जग बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपुकेनादिम सोमन भिक्टर चोयादीको हसना झिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ झिगु विश्वासके चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 65 33 39 98 65 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसीह।